दिन हजे बाकी है। असी अपनी उम्र तेरे पति गुरु नानक दे घर दे सेवादार रामदास नूं बख्शिश करदे हां और नाल ही गुरु नानक दी गद्दी बख्शिश करदे हां। ए बोल गोविंदवाल साहब दे अंदर गुरु अमरदास महाराज जिया ने मुखों फरमाउणा कीते। पातशाह ने बाबा बुढ़ा साहब जी वर्गे गुरसिखा नूं आखिया सारियां संगतां नूं गोविंदवाल साहब दे अंदर एकत्र करो। एक ते रामदास नूं गुरता गद्दी बख्शिश करनी है, दूसरे साडे पुत्र बाबा मोहन ते मोहरी नूं लै आवो। मैं अपने हथी उन्हां नूं गुरु चरणा दे नाल जोड़ के जाणा है। जिस वेले संगत जी सदे भेज

हक साडा है। जिमें तमाम संगतां सेवा करदियां ने उवें ही इह रामदास सेवादार है। इस लई गुरता गद्दी तुसी सानू बख्शनी है। जे किधरे सानू ना बख्शी फिर पिता जी असी इन्हां दे चरणां विच नहीं जुड़ांगे। ऐसे कठोर बोल बोलने कीते बाबा मोहन ने। धन गुरु अमरदास महाराज जिया ने अपने छोटे पुत्र बाबा मोहरी वल वेख के आख्या, पुत्र जी तुसी गुरु नानक दे बचना नू पालो, गुरसिखी नू सांभना कर लवो, नहीं ते तुहाडे घर विचों हुण गुरसिखी उडारियां मार जावेगी। बाबा मोहरी जिया ने पिछला इतिहास संगत जी च धारणा कीता है कि गुरु नानक दे दर

0: सुन करके भाई मोरी जो बड़िया पागां वाले बोले ने
1: धर्म राय लेखा ले आगे
0: पिता जी जीवन अंदर असी जीव भुल

0: सिमरन करके अपना जीवन सफला कर लिया है।
1: सिखी पद मैं तो कहो दियो,
0: एदा तू उत्तम सिखा विचों सिखी कमाई है, साडे बचना नू पालना कीता है।
1: संतत ब्रद है समूह तुम्हारी,
0: धन गुरु अमरदास महाराज जी प्रसन्न होके वर बख्श दे पुत्र मोरी, तेरे पुत पोतरे तेरी संत

0: महाराज जी ने ऐसे बोल बोले, देखो धन गुरु अमरदास महाराज जी नु गुरता गद्दी बख्शिश कीती है, ते महाराज हाथ जोड़ के कहिंदे मैनू ते गुरसिखी चाहीदी। अजोके समय दे अंदर सिखी दे घाण होण दा कारण एही है संगत जी, हर कोई जथेदारी भालदा है, हर कोई आखदा है मैं किसे दे पिछे नहीं तुरना, जीने तुरना है मेरे पिछे तुरे, ए कारण है बड़ा। नवाब कपूर सिंह वर्गियां नू जदों बादशाहियां पेश होईयां ने बेनती कीती सी बादशाही कबूल करांगा, पर मेरी एक बेनती है पंथ नू जेड़ी घोड़ियां दी सेवा है खरखरा फेरन दी लिद चुकन दी, ओ नहीं त्यागांगा। जेकर तुहानू मंजूर है फिर मैं बादशाही नू कबूल करांगा, नहीं ऐसी बादशाही गुरु नानक दे दर दी सेवा तो किधरे वड्डी नहीं। संगत जी हुण सेवा भावना थुड़ गई है, हुण बादशाहियां दे मगर सिख पै गए ने। धन गुरु रामदास बेनती करदे, महाराज आप जीआं दे पुत्र योग ने बाबा मोरी जी गुरु बनन दे, कृपा करके मैनू अपने दर्दी सिखी सेवकी बख्शो जी।
1: गुरता उचित जुगम तुम नंदन,
0: महाराज गुरता गद्दी ते बैठ

0: रामदास जिया नू अपने सिंघासन ते बा करके दोनों हाथ जोड़ लए परिक्रमा कीतिया ने आखण लगे गुरु रामदास हुण तुसी गुरु नानक रूप हो गए हो हुण तुसी भाई जेठा नहीं रहे इसलिए साडी बेनती है मैं बिचारा गरीब मेरा परिवार कबीर गरीब मेरे पुत्र भी गरीब ही जानना जे
1: निरहंकार ना होए किस बैरी
0: एदा गुरु रामदास ए निरहंकार रहणगे बड़े चंगे ने भले ने कदे कदे ए मन मिटापा कर लैंदे ने एक दिन मुड़ आवणगे अपने चरणा दी शरण दे विच रखना जे
1: जहै इनकी नित प्रतिपाला
0: एदा जिमे असी अपने पुत्रा नू पालना कीता गुरु रामदास मेर दी निगाह पायो साडे पुत्रा दे बचना दा कोई गुस्सा गिला ना।

0: बड़ी कृपा कीती, मेरे पति नु स्वास भी बख्शे ने, हुण गुरता गद्दी भी बख्शिश करती है।
1: है हमारे वंश सदाई।
0: महाराज हुण एक कृपा करियो, क्योंकि बीबी भानी भी गुरु अमरदास महाराज जिया दी पुत्री है, गुरु रामदास महाराज जिया दी पत्नी है, गुरु अर्जुन देव महाराज जिया दी माता है, गुरु हरगोविंद पातशाह दी जिसने दादी बनना है, ब्रह्म ज्ञानन है। बेनती कीती, महाराज आउन वाले समय अंदर गुरु नानक दे घर अंदर बड़े दुखी भी पैदा होवणगे, ऐसा वर दे के जायो, हुण सोड वंश दे विच्चों किधरे गुरता गद्दी दी सेवा कोई होर ना लवे, गुरु नानक दे घर दी सेवा असी ही करिए जे।
1: होहे ना अस को दास अगारी।
0: एदा अगे कोई भी तुहाडा दास पहला दास बन के मरो, गुरु नानक दे घर दा दोखी ना होवे, साडे तो गुरता गद्दी दी सेवा ना खोवे जे।
1: कर सेवा लेव है पद भारी।
0: एदा महाराज आज असी तुहाडे चरण परस परस के एदा ही सेवा करदे रहांगे, जिवें गुरु रामदास जिया ने अपने सिर ते टोकरी ढोई है बौली साहिब दे विच्चों।

0: याद विच लगदे ने मिले उन्हां दी याद विच लगदे ने।
1: तेरी कंड उत्ते हाथ दशमेश दा रखे रुतबा तू शाह दरवेश दा पैरा पाल सिंगा गुरु दे।

सिंह सा भाई तारू सिंह ओ तेरे बंदा जो आशीर्वाद आउंदी रही ओ लत्थी खोपरी निहाल होके गाउंदी रही तेरी तेग धूड़ पाप दी अडाउंदी रही पाए

साहिब श्री रामदास चौथे पातशाह सोडी सुल्तान पे दादा उच्चारण कर रहे पावन शब्द मेरी प्रीत मां हो जीवा नाम ते आए बिन नावे जीवन ना थी है मेरे सतगुर नाम दृढ़ा नाम तो सखना जीवन नाम तो भी होना जीवन नाम तो खाली जीवन नाम तो बिना जीवन मेरे किसे काम दा नहीं जे मेरी हृदय च उस वाहिगुरु की याद है उसका नाम है मेरी प्रीत उसके चरणा नाल बनी है ते मैं जीवदा हां ते जीवन का कोई मकसद नहीं है। गुरु प्यारे बड़ा प्यारा शब्द करो कृपा सारे हल्के पढ़िए मेरे प्रीत मां हो जीवा नाम ते आए बिन नाम है जीवन ना थिए मेरे सतगुर नाम दिला आपा भी गुरु चरणा च अरदास करिए बिसरना ही दातार अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात नानक चाओ।

0: जीवन मसिया दी रात बन के रह गया जितकी जिंदगी मिली सी नूर होण लई प्रकाश होण लई चानण होण लई इते अंधकार बन के रह गए। ओ जद तीसरी अख खुल जाए तो ऐसे पुरुष नु कह दिता जांदा है त्रैनयनं तीन नेत्रा वाला त्रिलोचन लोचन अखा नु कहंदे ने त्रिलोचन इहदे कुल तीन नेत्र ने इहदे कुल तीन अखा ने। अक्सर हर मनुख नु असीं कह सकदे हां दोए लोचन त्रिलोचन जो हो गया उते संत है उते भगत है उते धार्मिक तल ते बुजुर्ग है त्रिलोचन। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 24 अवतारां दी कथा दे शिव जी नो कहिंदन त्रैनयनं बरी पुत्र का ताहे को प्यो त्रैनयनं तीन नेत्रां वाला कहिंदे ने ए दो अखां खुलियां संसार दा असली रूप दिखाई देंदा है किसे किसे नूं दिखाई देंदा है अजे बच्चे नूं नहीं दिखाई देंदा नवे बच्चे जन्मे नूं ते मां भी नहीं दिखाई देंदी उहनूं कोई पता नहीं मां है सामने प्यो खड़ा है उसनूं कोई बोध नहीं है मेरा पिता है सामने बहन खड़ी है इसनूं कोई ज्ञान नहीं है मेरी बहन है ये मेरा भरा है अजे अखां इसदियां दो खुलणगियां सहजे सहजे खुलन गया सहजे सहजे संसार दी असलियत प्रगट होवेगी। पर जिस दिन तीसरा नेत्र खुलदा है संसार भस्म हो जांदा है निरंकार प्रगट हो जांदा है। ये एक मिथ है कि शिवजी जद अपना तीसरा नेत्र खोलदा सी जो कुछ सामने सी भस्म हो जांदा सी वाकई भस्म हो जांदा सी संसार निरंकार दा रूप दिखाई देण लग पैंदा सी संसार खत्म हो गया निरंकार प्रगट हो गया। ए तीसरा नेत्र संसार नु भस्म कर देंदा है निरंकार नु प्रगट कर देंदा है। जिस भी किसी दा खुल जाए त्रिलोचन तीन नेत्रां वाला मनुख दे अंतिशकरण दे प्यास ते है ए अख मेरी खुले इस वास्ते बहुत सारे लोग ते अपना नाम भी यही रखांदे ने मां बाप अपने बच्चियां दा नाम रख देंदे ने त्रिलोचन तीन नेत्रां वाला भावे अजे दो अखां भी ढंग दियां नहीं खुलियां अजे संसार नूं भी देखण दे च ए असमर्थ है लेकिन त्रिलोचन धर्म दी दुनिया दे च इक शिखरमई अवस्था है तीसरा नेत्र खुल गया। तो खैर जैसे शरीरक तल्ला बचपना है जवानी है वृद्धावस्था है कोई सामाजिक तल ते भी बच्चा हो सकता है उसके रिश्तियां दिच पुख्तगी नहीं होगी उसके संबंधा दिच पक्याई नहीं होगी। बच्चा खिडौणियां नाल खेडदा है तोड़दा है सामाजिक तल ते जो अजे बच्चा है सवेरे संबंध जोड़दा है शामी तोड़दा है शामी जोड़दा है सवेरे तोड़दा है रिश्ते बनदे ने टुटदे ने बनदे ने टुटदे ने मिट्टी दे घर बनाना फिर मिटाना बच्चियां दा कम बनाना मिटाना ठेठ संबंध जोड़ने ने तोड़ने ने ये सामाजिक तल्ला बचपना है सवेरे रिश्ते जोड़े ने शाम नु तोड़ देते ने शाम नु जोड़े है सवेरे तोड़ देता है। तो किधरे किधरे कौमी पद्धर ते देश पद्धर ते भी सामाजिक बचपना दिखाई देंदा है किधरे किधरे राजनीतिक बचपना राजनीति भी सारी इसे आधार ते खड़ी तोड़ फोड़ ते ए जोड़िया ओ तोड़िया ए जोड़िया इस जोड़ तोड़ते जिस मनुख दी राजनीति खड़ी है तो एक गल स्पष्ट हो गई कि राजनीतिक बचपना है धार्मिक बचपना जो धर्म नहीं है उसनु ही धर्म समझ लेना। गुड्डी गुड्डे दा व्याह कर दे पैने बच्चे व्यर्थ ते व्याह खेल हो सकदा है जो अजय धार्मिक तल ते बचपना हा बचपन दे दौर चो लंघ रहे है उदे सारे कर्म खिडौने तो ज्यादा कुछ भी नहीं होंगे और खिडौने भी गुड्डे ते गुड्डे दे। भगत कबीर कहंदे ने माथे ते लख हथ माला बाना लोगन राम खिलौना जाना। अगर राम खिलौना है तो खिलौने नाल बच्चे खेड देने। जो धार्मिक तल ते बच्चा है राम खिलौना है। राम कोई वास्तविकता नहीं है, राम कोई सच्चाई नहीं है, राम कोई हकीकत नहीं है, खिलौना खेडना है। मंदा परचावा, सिर्फ मंदा परचावा। जैसे बच्चा खिडौने नाल खेड रहा है मंदा परचावा, इस जरा शरीरक तल ते वड्डा हो गया, इस दे परचावे जरा वड्डे ने, इदियां ख्वाहिशां जरा वड्डियां ने। तो खिडौना भी बहुत वड्डा चाहिदा है और मामूली खिडौना नहीं, राम दा खिडौना चाहिदा है, ईश्वर खिडौना चाहिदा है, ताए खेडे। क्योंकि ख्वाहिशां बहुत वड्डियां, कामनावां बहुत वड्डियां, वासना बड़ी अपार, तो खिडौना भी कोई बहुत वड्डा चाहिदा है। तो राम खिडौना है, खेडना है। ये तीन तरह की जिंदगी रेच तीन तरह के पड़ाव मिलते ने, बचपना जवानी वृद्धावस्था। समाजिक जीवन रेच, राजनीतिक जीवन रेच, धार्मिक जीवन रेच। चूंकि गल करिए धर्म दी, ते धर्म ही एक ऐसा विषय है जिन्हों समझ लिये ते सब कुछ समझ लिया, जिन्हों नहीं समझिया ते कुछ भी नहीं समझिया। महाराज दी बाणी दा फरमान बड़ा सुंदर, सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न छाना रे। धर्म नू जानिया ने, परमात्मा नू जानिया ने, जानकारी बहुत कठी कीती है और कहिंदा मैं ए जानदा, मैं ए जानदा, मैं ओ जानदा, पछे कहने तू कुछ भी नहीं जानता, अनजान है। की होया तू वनस्पति शास्त्री बन गया, की होया जे तू अर्थशास्त्री बन गया, की होया जे तेनू शरीर दी कुछ समझ पै गई है, वैद बन गया, की होया जे तेनू कोई थोड़ा जहा फिलसफा घोटना आंदा है, अजे जीवन दी मूल सता दा तेनू कोई बोध नहीं, अनजान। बहुत सारियां दा ज्ञान अनजानपने दी बुनियाद ते खड़ा होंदा है। ये इसनू इंज कहिए, बहुत सारियां दा महान ज्ञान महान अज्ञान ते खड़ा होंदा है। आधारशिला अज्ञान है, उपर ज्ञान खड़ा कीता है, तो ओ सारी जानकारी बेमैनी हो जांदी है जितने चिर तक धर्म दा ज्ञान ना होवे। कहिंदे ने एथिन दा प्रसिद्ध संत सुकरात बच्चियां नाल खेड़दा खेड़दा बचपन दियां गल्लां अक्सर कहिंदा सी, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नहीं जानदा, मैं सब कुछ जानदा, मैनू सब कुछ बोध है, मैनू सब कुछ दा पता है। पर सुकरात कहिंदे ने जद मैं जवान होया तो छोटे आंदे आ बच्चियां जो मैं बोल बोलदा सी ओ बोल जद मेरे सामने आंदे सन तो शर्म नाल अखां झुक जांदियां सन। मैनू जवानां दी महफिल विच बैठ के कहना पिया कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानदा। और यही महापुरुष कहिंदा अज मैं बुढ़ा हो गया। एक गल मैं दावे नाल कहना और सही ते सच्ची, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैनू कुछ भी नहीं पता। जिस जिस नू भी मैं ज्ञान आखिया उते अज्ञान साबित होया। धर्म नू जाने बिना कुछ भी नहीं जानिया, प्रभु नू जाने बिना कुछ भी नहीं जानिया। सारी जानकारी रेत दा ढेर साबित हो जांदी है अगर परमात्मा नू नहीं जानिया, ईश्वर नू नहीं जानिया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने धर्म दियां इस अवस्थावां नूं जिस ढंग नाल खोलिया है, ओ मैं उन्हां दे शब्द दी विचार नूं पेश कर रहा। भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर गर्भ परत गह ले हो अंगुरिया सर्वन न सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने हे प्रभु है ते सही मेरे कोल धार्मिक जीवन पर ए जीवन ऐसा है जैसे किसी मां दी गोद विच उसका बच्चा एक मासूम बच्चा और उस बच्चे नो ए भी नहीं पता है मेरी मां है जिसने मेनू गोद विच लिया है अज जमे है एक दिन दा है दस दिन दा है पंद्रह दिन दा है बैठा ते मां दी गोद विच है सो रहा है मां दी गोद विच लेकिन गोदी दा कोई ज्ञान नहीं कुख दा कोई ज्ञान नहीं पिला रही है रिजक दे रही है दुध मां पर रोजी देहिंद दा इसनु कोई बोध नहीं है परचा रही है खिड़ा रही है अपने हथा नाल पर ए हथ की ने कुछ भी ज्ञान नहीं कुछ भी बोध नहीं। अगर इस हिसाब नाल देखिए बहुत सारिया नु कोई बोध नहीं असि कित्थे आ किस दे हथा दे चा किस दी गोद दे चा इतना भी बोध नहीं है। बालक बुद्ध अचेत बिल्कुल बचपना। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने हे प्रभु धर्म दी दुनिया च मेरा जन्म ते हो गया पर जन्म ऐसा जैसे बच्चा मां दी गोद च है कुछ भी बोध नहीं मुंह दे जबान है बोल नहीं सकता हाथ है गे ने कुछ भी नहीं कर सकता पैर है गे ने चल नहीं सकता दिमाग है सोच नहीं सकता कान है गे ने नहीं सुन सकता। इस बच्चे नु कुछ भी नहीं पता सामने जो गुफ्तगू हो रही है की है दो बंदे जो कुछ बोल रहे ने की है माता पिता जो कुछ बोल रहे ने की है इन्हू कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा इन्हू कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। जन्म होया तो बहुत सारिया का धार्मिक दुनिया के जन्म ते हो जाता है जन्म हो गया है ये असि किस तरह वेखांगे मंदिर जान लग पे गुरुद्वारे जान लग पे पूजा पाठ करन लग पे बाणी पढ़न लग पे कथा कीर्तन सुनन लग पे अमृत वेले उठन लग पे कर्म कांड विच प्रवृत्त हो गया। लेकिन इस सब कुछ की है कुछ भी बोध नहीं कुछ भी पता नहीं। इस तरह हो रहा है जैसे गोद विच बच्चा है दूध पी रहा है खिडाया जा रहा है हथां विच सुलाया जा रहा है गोद विच पर उसकी अवस्था च सब कुछ अचेतमई चल रहा है दूध पीना भी अचेतमई चल रहा है हथां विच खेडना भी अचेतमई चल रहा है। धार्मिक कर्म सारे दे सारे अचेत ते खड़े ने सुचेत नहीं है सावधान नहीं है। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने हे प्रभु जन्म हो जाना ही काफी नहीं जीवन भी ते मिलना चाहिदा है। बच्चे दा जन्म हो गया है इस कुल कोई समाजिक जीवन नहीं बच्चे दा जन्म हो गया है इहदे कुल कोई राजनीतिक जीवन नहीं बच्चे दा जन्म हो गया है इहदे कुल कोई धार्मिक जीवन नहीं कुछ भी नहीं है। जन्म होया है लेकिन जिसनों कहने ने जिंदगी ये नहीं है जिसनों कहने ने जीवन ये नहीं है ये तेज विकसित हो गया जिस अज समा हुए लगेगा लेकिन ऐसा देखण दे चाया विकास हो जाता है समाजिक जीवन का रिश्तियां भी समझ आ जाती है ये मेरी मां है ये मेरा पिता है ये मेरी बहन है ये मेरा भरा है अखां खुलदियां जा रही ने समाजिक तल ते प्रौढ़ होंदा जा रहा है जवान होंदा जा रहा है रिश्तियां दी सोच समझ वधदी जा रही है ए मेरा मित्र है ए मेरी पत्नी है ए मेरा पड़ोसी है लेकिन ए मेरा परमात्मा है धार्मिक तौर ते अजे भी अनजान रह जांदा है अजे भी मासूम रह जांदा है। अजे भी जो है बच्चा रह जाता है। एक दिन राजनैतिक तल से भी प्रौढ़ हो जाता है, सियाणा हो जाता है, और राजनैतिक लोगों दी गल्लां दे उत्ते उसका विश्वास नहीं बनता। अज तो 2500 साल पहले एथन दे प्रसिद्ध संत सुकरात ने कहा सी, और बड़े कीमती उसके पोल ने अज ते सारी दुनिया पढ़ रही है, राजनैतिक ते अपराधी एको ही जहनीयत दे मालिक होंदे ने, एको ही मनोविरति दे मालिक होंदे ने। फर्क सिर्फ इतना है कि जिथे छोटा अपराध है अपराधी है, जिथे वड्डा अपराध है राजनैतिक है। सुकरात दे ए बोल कहना पेगा अमर बोल ने, और इस तरह दे पुरुष वक्ती बोल बोलते भी नहीं, अमर बोल बोलते ने। उन्हां दा संदेश वक्ती संदेश नहीं आउंदा, अमर संदेश आउंदा है, और उन्हां दे संदेश विच कदी मुर्दमे नहीं आउंदी, क्योंकि अमर बोल होंदे ने, सदीवी बोल होंदे ने, और बहुत वड्डी जो है सच्चाई है। जद भी कोई राजनीति नूं समझण वाला हो जांदा है, राजनीतिक लोगों के बोल हवा के गुब्बारे दिखाई देते हैं और कुछ भी नहीं। तो एक दिन सियाणा हो जाता है राजनीतिक तल ते, एक दिन इसनु बोध हासिल हो जाता है समाजिक तल ते, और इसे ही बोध देच जीवदिया जीवदिया अपनी जिंदगी का अंत कर बैठता है। एक दिन धार्मिक जीवन अपने शिखर नु छूंदा ही नहीं, कईयां दे अंदर ते ए जीवन पैदा ही नहीं आउंदा, कदी मंदिर गए ही नहीं, कदी मस्जिद विच नमाज पढ़ी नहीं, कदी गुरु द्वारे विच गुरु दी झलक वेखे ही नहीं, कदी कीर्तन सुनिया ही नहीं, कदी कथा दी तरफ कन ही नहीं कीते। ए उसका कदी शौक ही नहीं बनया, जन्म ही नहीं होया। होया जन्म शरीरक, होया जन्म समाजक, होया जन्म राजनैतिक, धर्म दा ते अजे कईयां दे शरीर दे जन्म ही नहीं होया हुंदा। पर जे हो भी गया जन्म तो जीवन नहीं है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, हो गया जन्म लेकिन हे प्रभु अजे मैनू चलना ते आया ही नहीं, तेरा दामन पकड़ना ते आया ही नहीं, तैनू वेखना ते आया ही नहीं। अगर एक बच्चे नू मां मां नहीं दिखाई देंदी, प्यो पिता दे रूप च नहीं दिखाई देंदा, अचेत अजे नवजायद है, अजे इसनु कुछ भी बोध नहीं, कुछ भी समझ नहीं, गुरु गुरु दे रूप च नहीं दिखाई देंदा, प्रभु प्रभु दे रूप च नहीं दिखाई देंदा, इसनु कहना पेगा धार्मिक तल ते अंधा है। कोई राजनीतिक तल ते भी अंधा हो सकता है, कोई समाजिक तल ते भी अंधा हो सकता है, भैन भैन नहीं दिखाई देती, भैन नाल भी गलत व्यवहार करता है, मां नाल भी रिश्ता इसका ठीक नहीं, पिता पिता नहीं दिखाई देता, इस नाल भी संबंध गलत ने, पत्नी पत्नी नहीं दिखाई देती, पति पति नहीं दिखाई देता, कई समाजिक तल ते भी अंधे होंदे ने, बिरा बिरा नहीं दिखाई देता, मित्र मित्र नहीं दिखाई देता, पुत्र पुत्र नहीं दिखाई देता, और इना नाल ऐसा अनाचार ओ कर बैठते ने, बिरा बिरा नाल नहीं कर सकता, एक प्यो पुत्र दे नाल नहीं कर सकता, एक पति पत्नी नाल ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता, पर एक पत्नी इस ढंग नाल पेश नहीं आ सकती। तो कई ते समाजिक तल ते भी अंधे होंदे ने, समाज दे रिश्ते भी नहीं दिखाई देंदे, कई राजनीतिक तल ते अंधे होंदे ने, लेकिन बहुते अंधे धार्मिक जगत विच मिलणगे। इस वास्ते गुरु नानक ने ते ऐलानिया कह दिता, अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोयण नाए, अंधे से ही नानका जो खसमो को थे जाए। धार्मिक दुनिया दे ते सारे सूरदास बने हुए ने, अखां बंद खुलिया ही नहीं, ना प्रभु दी झलक ना गुरु दी झलक, अजे धार्मिक तल दा जीवन प्रगति नहीं होया।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ 1550 AM। ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਭਾਈ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਮਹਾਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਟਿਊਨ ਇਨ ਕਰੋ 1550 AM ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ।
2: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Bod of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Bod, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBodGroup.com.

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर काल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद सर्वशील ममं शीलं सर्व पावने मम पावनं सर्व कर्तव्ये ममं कर्ता नानक लेप छेप नालिपियते। सन्माननीय गुरु रूप सत्संग जीओ, गुरवाणी विचार आरंभ करा। पेश कर सनेमर गुरुदेव दी फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस वक्त जो सतगुरु ने ख्याल बख्शे ने थोड़े जिया समय च, वो मैं थोड़े सामने रखने की निमाणी कोशिश कर रहे हैं। दो पंक्तियां नू आधार बना के, है हजूर कत दूर बतावो, दुंदर बांधो सुंदर पावो। पंक्तियां मैं फिर दोहरावा, है हजूर कत दूर बतावो, दुंदर बांधो सुंदर पावो। दूर क्यों कहंदे हो? जगत विच जो कुछ भी सानू मिलदा है एक दिन बिछड़दा है। कुछ भी मिले, दूर क्यों जाइए? तन मिलदा है, तन भी बिछड़।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जा कॉल किरण @604581 1900।

सो कैसो कोके ना सो ये आसार रात दिनस के कूकने कवे के सुने पुकार। कबीर केंद्र में तो दिन रात बोली जाना कैसो कैसो कैसो ना तो बोली बोली जाना किसे दिन के केड बने किसे दिन के केड बने। जगत विच असी पहले वेखदे आ फिर बोलदे आ प्रभु नाल ते पहले बोलना पेगा बोलदे ही बोलदे एक दिन दिखाई दे सामने खड़ा बिल्कुल निकट के। तो मैं अर्ज करा जैसे बोलन का फुरना पैदा होंदा पवन नाभि नाल टकरा उत्थों धुन उठदी है उन्हों कहिंदे ने परा। धुन उठ के जद हिरदे तक पहुंचती है उन्हों कहिंदे ने पसंती इत्थे उसनों शब्द मिलते हैं अल्फाज मिलते हैं। हिरदे तो उठ के वाक जद कंठ तक पहुंचता है इन्हों मधमा कहिंदे ने वाक पूरा बन जाता जो कहें जबान इसनों बयान कर देती है इन्हों बैखरी कहिंदे परा बसंती मधमा बैखरी इनू चार बाणिया कहने परा ही बसंती बनती है बसंती ही मधमा बनती है और मधमा ही बैखरी बन पवन टकराई नाभी ना धुन पैदा हुई पर पहुंची हृदय तक अल्फाज मिल गए ये बन गई पूरे का पूरा वाक बन गया जो कहना है कम अंदर बड़ा तेजी ना लाता कंठ तक पहुंचे इनू कहने मधवा जवान ने बयान कर दिता इनू कहने बैखरी धुन बार आ गई जवान देरा जो नाभि तो उठी सी हिरदे से कंठ दे पहुंच गए जो रसना दे रही।

0: ये दोने इस दोनों नो दोने इस नो कबीर कहने ने उल्टी गंगा जमन मिला ये गंगा जिथों जन्मी है जमन जमी है पैदा हुई है गंगोत्री गंगा नो उल्टा के जिथों जन्मी है उथे मिला उथे ले जा धुन कितों उठी है धुने नाभी तो धर्म की साधना कहती है उन्हें जबान दे राही जो धुन प्रगट हो वाहे गुरु इन वापस ले जा दो
1: गुरु
0: वापस ले जा दो इसे क्या आखण औखा साचा बड़ा बड़ा वाहेगुरु वाहेगुरु आखना की है सौ दफा कह रहा पांच सौ दफा कह रहा कहते हम एक दफा ये वाहेगुरु रसना आखे इन पलटा के उठे ले जाई जिथों उत्पन्न हो जाए जिथों धुन उठी दोनों धोनी तक ले जाए धुन उठी नाभि तो धोनी तो पर आई हृदय तक पसंद थी फिर पहुंची कंठ तक मदमा फिर जबान ने बयान कर देती बैखरी हूं बैखरी नु मदमा बनाना है मदमा नु पसंदी बनाना है ते पसंदी नु फिर पराना उल्टी गंगा जमन मिला ते किस तरह हो गए अमृत वेले बैठ के कभी ध्यान साधना करोगे ते पता चलेगा इसे ने गुरु नानक ने कह आखण औखा साचा कठिन सारा दिन राम राम राम करी जा रहे और राम की धुन जिथों उठी उथों वापस ले वापस ले जाने वाली अंदर क्रांति होगी यकीन जानो एक दफा का वाहेगुरु आखना जन्मा जन्मांतरां का

इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। जन्म तो ही मनुख खोजी बिरतियां लेके आया है, खोज रहे है जन्म दर जन्म, एक खोज रहे है लब रहे है तलाश कर रहे है। खोज खोज के जो मिले है उस तो तृप्ति नहीं, तृप्ति किवें होनी है इसका कोई पता भी नहीं। धार्मिक चिंतक ते ऐसा कहंदे ने कि मनुख तृप्ति दी ही तलाश दे चे, और तृप्ति तो बिना इसनु होर कुछ भी नहीं चाहिदा। रजेवा चाहिदा है, तृप्ति चाहिदी है, और रजे होए नु ही राजा कहंदे ने। ए राजा होना चाहंदा है, ए राजा बनना चाहंदा है, ए महाराजा बनना चाहंदा है। खोज है, तलाश है महाराजा होण दी, राजा होण दी। खोज दे आज तक जो मनुख ने आधार बनाए ने वो है जमीन, पहाड़, सागर ते आसमान। अनंत काल तो पीढ़ी दर पीढ़ी, जन्म दर जन्म मनुख धरती दी गोद विचों अन्न कट रहे है, धन कट रहे है, और लंबे समय तो इस दी कोख विचों बहुत कुछ मनुख प्राप्त कर रहे है, प्राप्त करदा आया है। पर जमीन इसनु राजा नहीं बना सकी, महाराजा नहीं बना सकी। भावे जमीन देते रहन वाले जमीन मल के राजा होण दा दावा कर दे रहे, महाराजा होण दा ढंडोरा पिट दे रहे, पर किथे ओ राजे सन। कहिंदे ने सिकंदर ने अंतम समय अपने साथियां नु कहा सी, कफन चो मेरे हथ बार ही कढ़ने, ताकि जगत नु पता चले थोड़े हथ ही खाली नहीं, मेरे हथ भी खाली ने। तुसी ही सिर्फ खाली नहीं लौट दे ते खाली रहंदे, मैं भी खाली रहा और खाली वापस हो रहा। नहीं भर सकया, नहीं त्रिपत हो सकया, नहीं राजा बन सकया, नहीं महाराजा बन सकया। एक गल वखरी है कि सदियां तो मनुख राजा महाराजा दा लेबल अपने उपर लांदे रहने, ए राजा है, ए महाराजा है, ए बादशाह है।

पर सीने चीर के देखिए, सिवाय कंगालता तो और कुछ नहीं, सिवाय भुखमरी तो और कुछ भी नहीं। तो जमीन मनुख दी झोली नहीं भर सकी, राजा नहीं बना सकी। भावे जमीना ते रहण वाले, धरती ते रहण वाले राजा महाराजा होण दा दावा करदे रहे। फिर मनुख दियां निगाहां पहाड़ां ते चलियां गईयां। इसने पहाड़ां दे सीने चीरे, बहुत कुछ लभया। लोहा लभया, तांबा लभया, कोयला लभया, और इसे ही पहाड़ां दी कुख दे चों इसनूं सोना लभया, चांदी लभया, हीरे लभे, तरह तरह दे रतन लभे। इसने अपने घर भड़े, इसने अपना तन सोने दे गहनियां नाल सजाया संवारिया। इसने हीरे अपने ताज दे जड़त कीते, और इसने लोहे नूं, इसने तांबे नूं जस्त, इस तरह दी होर मैदनियात नूं अपनी जरूरी कमां दे चलाया। लेकिन फिर भी कंगाल दा कंगाल रह गया। धरती दे इतने वड्डे पहाड़ एक छोटे जिया मनुख नूं रजा नहीं सके, त्रिपत नहीं कर सके। फिर मनुख दी निगाहां सागर वल दौड़ियां, और उसने सागर दे पानी नूं छाणिया, चप्पे चप्पे नूं छाणिया। बड़ा कुछ इसनूं सागर तो भी मिलिया और मिल रहा है, लेकिन झोली फिर भी खाली, फिर भी ये त्रिपत नहीं हो सकिया। फिर भी ये अपने आप नूं कहिंदा ते रहा, मैं राजा, मैं महाराजा, पर नहीं, तीन हिस्से पानी है, एक हिस्सा धरती है। इतना वड्डा सागर भी मनुख नूं राजा नहीं बना सकया। निगाहां आसमान ते चलियां गईयां, चंद्रमा ते, होर ग्रह नक्षत्रां ते, शायद इत्थों कुछ लभे और मेरी झोली भरे। लेकिन चंद्रमा तो भी मनुख मुट्ठी भर रेत लेके ही वापस आया है, झोली खाली है, निगाहां होर अगां तो अगां जा रही ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी दा फरमान है, ए बंदे, जे तेनू धरती तृप्त नहीं कर सकी, तेनू पहाड़ नहीं रजा सके, तेरी प्यास सागर नहीं बुझा सके, और ग्रह नक्षत्र भी तेनू महाराजा नहीं बना सके, तो कम से कम तू इस अनुभव तो लाभ उठा। बार जितनी भी खोज करेगा, तेरी लोड़ां दी पूर्ति होवेगी, तू राजा नहीं हो सकेगा, महाराजा नहीं हो सकेगा, फिर किथे खोज करिए। तो सतगुरु दी वाणी कहंदी है, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। भगत कबीर भी फरमान करदे ने, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माए, ए जो दुनिया शहर मेला, दस्तगीरी लाए। ए बंदे, जमीन ते तू खोजी, पहाड़ सागर आसमान ते तू खोजे है, पर हुण अपने दिल दी खोज कर, अपने मन दिच जाती मार। पहाड़ां दी खोज लई बार मुखी होना पैंदा है, धरती दा सीना चीरन लई बार मुखी होना पैंदा है, सागर दी कुख दे चों मोती कढ़न लई बार मुखी होना पैंदा है, पर अपने ही जीवन दे मन दे अंदर जात मार के रब्बी खजाना कढ़ना, इहदे लई अंतरमुखी होना पैंदा है। ध्यान नूं अंतरमुखी करना है, जो बार जा रहा सी ओनू अंदर लेना है। बंदे खोज दिर हर रोज, ना फिर परेशानी माए, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। मन एक बहुत वड्डा महल है, मन एक बहुत वड्डी भूमि है,
और मन एक बहुत वड्डा पहाड़ है, मन एक बहुत वड्डा सागर है। शायद इसे वास्ते भगत पीपा जी कहंदे ने, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणय परम तत्व है, सतगुरु होए लखावे। जो तो ब्रह्मंड दे खोजदा रहे हैं, इस तरह की खोज अपने अंदर भी कर सकता है। फर्क सिर्फ इतना है, ब्रह्मंड दी खोज कर करके पदार्थ तेरे हाथ लगे ने, पर जे तू पिंड दी खोज कीती तो परमात्मा तेरे हाथ लगेगा। सागर दे चो तेनू मोती मिले ने, पर मन दे सागर दे चो तेनू ज्ञान मिलेगा। पहाड़ां दे चो तेनू धातुआं मिलियां ने, पर दिल दी खोज करदिया करदिया तेनू शांति सकून मिलेगा, चैन मिलेगा, आनंद मिलेगा। जमीन दे चो तेनू अन्न मिले है, धन मिले है, पर मन दे चो तेनू तृप्ति मिलेगी, रजेवा मिलेगा, तू राजा बन जाएगा, महाराजा बन जाएगा। चंद्रमा तो तू मुट्ठी भर रेत ले आया है, पर जे थोड़ा जिया अंदर जाती मार, मन दे चंद्रमा दे चो तेनू ओ अदुती खजाने लबणगे, कि तू अनंत काल तक माला माल हो जाएगा, सदीवी माला माल, सदीवी चढ़दी कला, सदीवी आनंद। बंदे खोज दिल हर रोज, एक खोज रोज रोज करनी पड़ेगी, और उतने चिर तक करनी पड़ेगी जितने चिर तक ए खजाना हथे नहीं आउंदा, ए दौलत हथ नहीं आउंदी। कोई थोड़ा जिया अंतरमुखी होंदा है तो कविता गीत संगीत उसदे पल्ले पै जांदा है। जो कवि है ए थोड़ा जिया अंतरमुखी होया है, मन दे एक निक्के जिया कोने दे च थोड़ा जिया इसने प्रवेश कीता है, एक कवि बन गया। मन दे दूसरे कोने दे च किसे ने थोड़ा जिया प्रवेश कीता है, एक संगीतकार बन गया, दार्शनिक हो गया, फिलोसफर हो गया, चिंतक हो गया। पर मन इतना महान है, और इस दे अंदर जिना जिना ने भी जात मारी है वो ते कहंदे ने कि मन दा पारावार नहीं, अथा दैवी गुणा नाल ए भरे होया है। कहंदे ने पश्चिम दे मनोविज्ञानक ए आखदे ने कि भारती ऋषि मुनि गलत कहंदे ने कि मन दे च राम है, कतई नहीं, मन दे च काम है। भारती ऋषि मुनि जो ये कहंदे ने मन दे च अथा खजाने ने, वो कहंदे नहीं, मन दे च सिवाय कंगालता तो साडे पल्ले होर कुछ नहीं पिया। दरअसल पश्चिम ते पूरब दा जड़ा मनोविज्ञान है उदे आधार अलग अलग ने। पागल बंदियां नू आधार बना के पश्चिम दा मनोविज्ञान खोज करदा रहा कि पागल क्यों हो जांदे ने, पागलां नू आधार बना के ए पागल क्यों हो जांदे ने, इस दी खोज ओ मन विचों करदे रहे। पर कोई आनंदित हो गया है, समाधि लीन हो गया है, परम प्रसन्न हो गया है, ऐसा क्यों हो गया है, ये परम आनंदित क्यों हो गया है, ये परम सुख चैन दी दौलत नाल माला माल किस तरह हो गया है। इस तरह दे तंदुरुस्त बंदे नो आधार बना के भारत दे ऋषि मुनि मन दी खोज कर दे रहे हैं। तो एक ने तंदुरुस्त नो आधार बना के मन दी खोज की थी, एक ने बीमार नो आधार बना के मन दी खोज की थी, तो फिर खोज दे जमीन आसमान दा अंतरा ते होना सी। ओ होया पश्चिम दा मनोचिंतक कहिंदा है मन दिच वासना है, मन दिच अहंकार है, मन दिच लोभ है,
ਜਿਤਨਾ ਗਹਿਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਭ ਹੀ ਲੋਭ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਹੀ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਕਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੇ ਐਸਾ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ, ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ, ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹੀ ਫੁਰਨੇ ਪੈ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਤਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਤਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਤੇ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਠਹਿਰਾਓ ਹੈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਦੀ ਉਛਲੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਤੂਫਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਉਛਲੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਉਛਲੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਉਛਲੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਹੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਤ ਨੀਝਰ ਬਾਜੇ ਕਾਇਆ ਡੂਬੇ ਕੇਸਵ। ਇਹ ਕੇਸੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਬੜੀਆਂ ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। ਤੋ ਸਾਗਰ ਦੀ ਉਛਲੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਉਛਲੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਲੋਭ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਉਛਲੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦੇਖੇਗਾ, ਇਸ ਉਛਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਤੋ ਸਿਵਾਏ ਕਾਮ, ਸਿਵਾਏ ਲੋਭ ਤੇ ਸਿਵਾਏ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੋ ਪਛਮ ਦਾ ਮਨੋਚਿੰਤਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਕਾਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਾਗਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਵਾਜ਼ਨ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਉਂ ਖੋ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਕਾਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਔਰ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਅਸੀਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਤੁਲਨ ਖੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤਵਾਜ਼ਨ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਕਾਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਭ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਮੋਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪੂਰਤੀ ਵਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਰਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੋਹ ਛਿਨ ਮੰਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦਰਾੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਲਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਛਿਨ ਛਿਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਲੋਭ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਇਨਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧ। ਇਹੀ ਅਸੀਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਰਾਇਡ ਤੇ ਪਛਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮਨੋਚਿੰਤਕ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਕਾਮ ਹੈ, ਮਨ ਲੋਭ ਹੈ, ਮਨ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ।
लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी तो पूछी है तो धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहंदे मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण तू ते जोत स्वरूप है तू ते परम प्रकाश है तू ते परम आनंद है तू ते परम खेड़ा है। देखदे हां सी सिपियां शंख लहरां सागर दे कंडे ते ने उपरी सतह ते ने गहराई विच मोती पए ने उपर नहीं मोती मिलदे किनारे ते नहीं मोती मिलदे तो ज्ञान प्रेम समदृष्टि निर्वैरता निर्भयता परम आनंद परम समाधि ये गहराई दे चे तो गहरे उतरना ही मन दी खोज है। और साहिब केंद ने जो गहरा चला गया मन दी दुनिया च खोज दिया उसनु नौ खजाने दी प्राप्ति हो जाएगी नौदा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस मन को कोई खोजो भाई मन खोजत नाम नौ निद पाई। जिस दिन परमात्मा दा नाम प्राप्त होंदा है नाम दी दौलत दे नाल ए राजा बन जांदा है ए महाराजा बन जांदा है। भाई नंद लाल कहंदे ने गदाए कुए तोरा मेले बादशाही नेस्ट हवाए सल्तनतो वजाओ के कज कुलाही नेस्ट। हे गुरु गोविंद सिंह तेरी गली चो जद कोई भूल के भी लंघदा है ओ दो जहाना दी बादशाहत नू ठोकर मार देंदा है माला माल हो जांदा है महाराजा बन जांदा है महाराजियां दा महाराजा बन जांदा है त्रिपत हो जांदा है। इसे नू ही गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने ढंग नाल बयान कीता है। आप कहंदे ने कि कोई मलकियत बारों इतनी जुटा लवे जितना के सागर दा पानी है जमीन नालों तीन हिस्से सागर ज्यादा है पानी ज्यादा है धरती घट है। इतना वड्डा पसरे होया फैले होया ए सागर और कोई बादशाह होवे सुल्तान होवे इतना वड्डा जितना के पसरे होया है पानी समुंद्र सा सुल्तान इसदे घर दौलत कितनी होवे सोना चांदी कितना होवे इसदे घर दे हीरे पन्ने रतन जवाहर लाल कितने होवन गिरहा सेती माल धन जमीन दे उते जितने पहाड़ ने इतना इसदे घर दे सोना होवे चांदी होवे पन्ने ते रतन होवन कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मनो न विसरे। ओ कीड़ी जिस दे मन विच प्रभु भुलिया नहीं जो समाधि लीन हो गई है इतना वड्डा बादशाह उस कीड़ी दे समान भी नहीं है उस दे पैरां दी खाक भी नहीं है कीड़ी गिनती मिनती च नहीं आउंदी कई दफा दृष्टि च भी नहीं आउंदी। जिस बंदे दी कोई जात नहीं पात नहीं कुल नहीं जिस बंदे दी कोई परिवारिक ताकत नहीं समाजिक शक्ति नहीं आर्थिक ताकत नहीं कुछ भी नहीं हर पासे पछड़े होया है और किसी दी निगाह भी उस ते नहीं पैंदी बिल्कुल कीड़ी दी थल्ले बिल्कुल सारे पैरां दे थल्ले। पर सतगुरु कहंदे जे उसके हिरदे च किधरे परमात्मा दा नाम वस जाए ओ किधरे अंतरमुखी हो जाए तो इतना वड्डा बादशाह भी उसके पैरां दी खाक नहीं क्योंकि मलकियत जता के भी जो अंदरों कंगाल है ओनू महाराजा कहना सिर्फ इतना ही है जिवें उपर लेबल लगे होया अंदर तो कुछ भी नहीं है खाली है। तो जैसे कोई मन विच प्रवेश करता है गीत मिलते ने संगीत मिलता है दर्शन मिलता है फिलसफा मिलता है पर ये सब कुछ है थोड़ी जिया गहराई दे है होर अगे जाना है। सत्संग दा यही लाभ है धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे कोल बैठ के उसनु सुनन दा
ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਘਬਰਾਹਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਜਦ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਸਾਹਸ ਜੁਟਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਜਾਈਏ, ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਜਾਈਏ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਾਹਸ ਜੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਮਿਲਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਫਿਲਸਫਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਰਿਧੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਇਸਦੇ ਕਦਮ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ ਚੈਨ ਛੋੜਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ ਛੋੜਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗ ਬਣੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਹੱਥ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਪਸਰਨਗੇ, ਮਹਾਨ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਪਜ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਇਸਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਸ ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਚੋਂ। ਮਹਾਨ ਉਸਾਰੂ ਬੋਲ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੋ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਸਤਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲ ਮਾਮੂਲੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੱਥ ਹੁਣ ਮਾਮੂਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਪੈਰ ਹੁਣ ਮਾਮੂਲੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਵਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਰ ਆਮ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਆਮ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਬੋਲ ਆਮ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਬੋਲ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ, ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੋਕ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿੱਧ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਡੁਬਕੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗਹਿਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਪ। ਤੋ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਤੈਨਾਦ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ। ਮਹਾਨ ਬਿਸਮਾਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਅਚਰਜਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਉਸਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਫੁਰਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਭਜ ਦੌੜ ਮਿਟ ਗਈ। ਉਸ ਨੇਚਲ ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਇਸ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੀ ਸਮਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਕਦੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਐਸਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਜੋ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਐਸੀ ਬੁਲੰਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਧਾਨ ਹੀ ਸਮਾਧਾਨ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਮਾਧੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੈ, ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ?
उतने चिर तक कोई ना कोई छोटी मोटी झलक लोभ दी चलती रहती है और कोई ना कोई बिंदु अहंकार का बनिया रहता है समस्या। लेकिन इस अवस्था ते पहुंच के मन दी दुनिया तो पार हो के कोई समस्या नहीं, समाधि ही समाधि। उन जो कुछ हो रहे है जैसा हो रहे है सब कबूल, दरिया दे बहाव नाल वो अपने आप नो बहा लेंदा है, विरोधता नहीं करता। ए दरिया जिस पासे हुन तू ले जाना है मैं उसे पासे ही जाना है। आखिर विरोधी दिशा दिच तैर के मनुख लंबा नहीं तैर सकेगा, आखिर टूटेगा थकेगा। और दुनिया दिच ऐसा ही हो रहा है, बहाव दे नाल अपने आप नो बहा लेना किसे नू कहंदे ने रब दी रजा दे इसने अपने आप नू जोड़ लिया है। जिधर रब रजा है वैण ते दाउ गाउ करे, जिस पासे हुन रब दी रजा है बस उस वास्ते ही उसे पासे ही जिंदगी नू तोड़ देता है, जिंदगी नू छोड़ देता है ईश्वर दे आसरे ते प्रभु दे आसरे ते। इस तरह दे बंदे दी जिंदगी च कोई भी समस्या नहीं, समाधि ही समाधि है। मन दी खोज करदिया करदिया गीत संगीत प्राप्त होए, रिधियां सिद्धियां प्राप्त होएगा, खोजदिया खोजदिया मन तो पार होए तो परमात्मा मिल गया और जीवन धन धन हो गया। सतयुग तै माणियो छलियो बल बावन भायो, त्रेतै तै माणियो राम रघुवंश कहायो, द्वापुर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उग्र सैन खोरा अभय भगतें जन दियो।

0: Ferndale.
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਹੈ। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे कार औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना ता मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। ऐथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਐਸੀ।

निरंकार है न लय निरकना चाहिए जियो पिंड सब दिसदा देखा जे आख गवाइए जे लोड़े है चंगा अपना कर पुनो नीज सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेश करें दियाइए को रहना परिये पाइए को रहना परिये पाइए।

पौड़े बिन सतगुर कने ना पायो, बिन सतगुर कने ना पाया। सतगुर विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुर मिलिए सदा मुक्त है जिन विच हमो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चित लाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेव की संतोखी जिन सचो सच त्याया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सुख के धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

बौड़ी सच्चा साहेब एक तुझने सचो सच बरताया, जिस तू दहेज से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया, मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया, विच दुनिया का है।

0: लोक महला पहला पड़ पड़ गड्डी लदिए पड़ पड़ भरिए साथ पड़ पड़ बेड़ी पाइए पड़ पड़ गड्डिए खात पढ़िए है जेते वर्ष वर्ष पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे की गल होर हो में जखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया ते ता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या

हूं करता करना मैं ना ही जाहो करी ना होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ जात में जो जोत में जात अगल कला भरपूर रहा तू सच्चा सैभ सुस वाले।

0: तुवा पूरा तपे का सतगिर तुवा हो का जुगरा थगन का कूड़ा गैर तुवा हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर स्वामी सच में आशा सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे सुरख पठानी अमल किया
1: चार वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाओ भगत करनी।

0: अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गा है शीश नवाए क्या थी जाए जाड़ दे कुसुदे जाहे
1: पढ़ पुस्तक संध्या बागन।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया, सबको आखे पाए हुए प्राणा सटिए ये फिर पाया होर नानक तग न टुटे जे तग होवे जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे साला ही ससूत दरगे अंदर पाइये तग न टूट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पवे निदारी तग न प्यारी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी वे तग आया पे बते।

होवे ता सन्मुख सिख कोई जी हो रह गुर नाले गुर के चरण हृदय त्याया अंतरात्मा समाले आप छड़ सदा रह प्रण गुर बिना वर न जाने कोई कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए।

मंगल नित सखी है सोग दुख ना व्या पाए गुर चरण लागे दिर सभागे अपना पिर जा पाए अनहत बाणी गुर शब्द जाने हर नाम हरस भोगो कह नानक प्रभ आप मिलिया करण कारण जोगो ए शरीरा मेरा सजाग मैं आया क्या क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तो जाग मैं आया जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन न वसाया गुर प्रसाद हर मन वसया पूर्व लिखया पाया कह नानक शरीर प्रवान होवा जिन सत गुर स्यो चित लाया ए नेत्र मेरे हर तो मैं जोत धरी हर बिना वरना देख।

0: जिन्हां दे प्राइसेस होलसेल नालों भी घट हन। फ्रूटी कैना दी नवी लोकेशन साउथ सरी विच जल्द ही खुलन जा रही है 2982152 स्ट्रीट। इस हफ्ते दे स्पेशल हन 11 जून तो 17 जून तक। धनिये दियां दो गुच्छियां 1.25 नू, ताजा अदरक लवो 98 सेंस नू पाउंड, बिना बीज वाला हदवाना 78 सेंस नू पाउंड, अते पालक लवो 1.29 दी गुच्छी।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਥੋਰ ਡੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੀਅਰ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਾਈਟ ਚੌਕ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦ ਬਾਰਡਰ ਵਿਦ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਮ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ 8 ਏਕਰਸ ਅਤੇ 100,000 ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਟ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਨਰਸਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਬੀ ਯੋਰ ਓਨ ਬਾਸ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 5 ਬੈਡਰੂਮ ਹਾਊਸ ਟੋਟਲੀ ਰੀਮਾਡਲ ਵਿਦ ਇਨਕਰਨ ਆਊਟਡੋਰ ਪੂਲ, ਰੀਟੇਲ ਸ਼ਾਪ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਥ ਨੂੰ ਐਟ 604-351-5111।

रामचंद्री राग के अंदर धन गुरु नानक देव जी महाराज की बड़ी कीमती पंक्ति है, पुरख में नार, नार में पुरखा, कौन विधे विध जाने। धन गुरु नानक देव जी महाराज इतों तीन जापता है कि आप जिथे एक महान आत्म ज्ञानी ने, ब्रह्म ज्ञानी ने, गुरुदेव ने, वसत के अवतारी पुरुष ने, उत्थे वो शरीर शास्त्री भी ने। तिन ने पुरख में नार, नार में पुरखा, कौन विधे विध जाने। विधाते दी इस विधि नू कौन जानदा है कि जो पुरख का शरीर है उसके अंदर नारी दे कण भी है, और जो नारी का शरीर है उसके अंदर पुरुष के कण भी है। कोई भी जो शरीर है मां बाप तो आया है, तो उसके अंदर मां की अंश भी है, पिता की अंश भी है, पुरुष के कणु भी हैं और नारी के कणु भी हैं। कहते हैं पुरुष इस वास्ते पुरुष हो सके कि उसके अंदर पुरुष के कण से पूरे ने, नारी अधूरी है, अर्ध हम, और नारी स्त्री मैं इस वास्ते स्त्री हो सकी है कि उसके अंदर नारी के कण से पूरे ने, पुरुष अधूरा है, अर्ध हम। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस गल तस्लिम किया कि बाहर की यह नारी पुरुष के अंदर दे हर अंग नूं संपूर्ण करती है, पर पुरुष का अहंकार प्रबल से उसने यह गल अंदरों से तस्लीम की, बाहरों आखण के संकोच किया कि पुरुष भी अर्ध अंग है, क्योंकि पुरुष के अंदर नारी अधूरी है, नारी के अंदर पुरुष अधूरा है, पुरुष करके नारी अर्ध अंग है, और नारी करके पुरुष अर्ध अंग, अर्ध अंग अधूरा अंग। तो ये दो अंग मिलके संपूर्ण हो, ये अर्ध अंग बाल की कशिश पैदा कर रहा है, पुरुष के अंदर नारी की कशिश, नारी के अंदर पुरुष की कशिश। गुरु नानक देव जी महाराज का कहना कि वो जो अर्ध अंग है वो संपूर्ण होना चाहिए। इस अर्ध अंग की जी संपूर्णता है, ये पशुओं की तरह ना हो, मनुख आकर मनुख है, ये को सोचनी है, ये को विचार ने। तो इस समाजिक रकम धर्म के दायरे में चला की आग्या हो, ताकि रिश्तिया पुख्तगी हो, रिश्तिया पक्याई हो, रिश्ते अटूट होवन, और जिस रिश्ते विचोले आप धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बन जा, मोर गुरबाणी भी लगे, और इसे तरीके प्राचीन ऋषि मुनि धर्म की मोर ला के इस अर्ध अंग की संपूर्णता करते सन, तो इसका नाम उन्होंने रखा सी विवाह। गुरमत विच यह नाम रखा गया आनंद कार्य, खुशी का एक कम, क्योंकि अर्ध अंग संपूर्ण हो रहा है। ऐसी जेरी मर्यादा बनाइए परिपूर्ण परमात्मा ने हाथ बनाई, ईश्वर भी एक होंदा होया अनेक है, उसने मनुख नूं भी अनेक हिस्सों में वंडिया। जैसे कलगीधर पिता कहते ने अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। हे प्रभु तू एक होंदा होया अनेक है, ते अनेक होंदा होया एक है। उसने खास करके पुरुष नूं भी ते नारी नूं भी अनेकता विच वंड दिता है। जो पुरुष किसी का बच्चा है, लड़का है, वो किसी का भरा भी है, और किसी का फिर पति बनता है, किसी का पिता है, किसी का दोस्त है, किसी का पड़ोसी है। एक पुरुष कितने रूप रखता है, ये भरा भी है, ये पति भी है, ये पुत्र भी है, ये पड़ोसी भी है, ये दोस्त भी है। इस तरह स्त्री भी एक होंदे होया अनेक है। जे किसी की बच्ची है, किसी की धी है, तो किसी की बहन भी है, किसी की बहन तो किसी की सहेली भी है, किसी की पड़ोसन भी है।
और फिर किसी भी पत्नी सारे रिश्तों में पकियाई होवे पवित्रता होवे इस वास्ते विचोला चाहिदा सी तो विचोला गुरु गुरु मोर लांदा है कि मनुख पुरुष भरा बने ते चंगा बने लोकी मान करन के भरा होवे ते ऐसा होवे ते पति बने ते आदर्शवादी और एक वाकई नमूना बने और ये पुत्र बने ते ऐसा कि मां बाप फखर करन ये दोस्त बने ते ऐसा कि दोस्त उससे मान करन और ये पति बने ते ऐसा कि पत्नी का मान सम्मान ते इज्जत आबरू बने उसकी खुशी बने हू बहु इसे तरीके नाल इतनी ही जिम्मेवारियां ने बच्ची दी ते बच्ची ऐसी बने कि मां बाप के हिरदे हमेशा याद करते रहन कि साडे घर का बिछड़िया होया फुल से पहले महक वंडी पेके कर दे हूं महक वंड रही है सौरे कर दे और मां बाप की खुशी बनी रहे महक फैल रही है खुशबू फैल रही है ते पत्नी बने आदर्शवादी ते भैन बने महान दया मान करन भैना मान करन सारे रिश्तों में पख्याई ते पुख्तगी ते लाजमी है ते पत्नी होवे ते ऐसी कि सारियां ही खुशियां का सोमा बन जाए पति और पति मान करे तो इससे लाजमी है कि रिश्ते महानता आवे किसी महान नाल संबंध जो है और इन्हों दो आत्मावान के संगम इन्हों दो शरीर के संगम दे कोई मदद चाहिए है जैसे परिपूर्ण परमात्मा की दुनिया की अभी देखते हैं दोहां नू जोड़ना है तीसरा चाहिए दो कागज जोड़ने ने गोंद चाहिए है दो कपड़िया नू जोड़ना है कोई धागा चाहिए दो इटा नू जोड़ना है तो बकायदा गारा सीमेंट इत्यादि चाहिए है दो लकड़ा नू जोड़ना है फ्रेज किल कुछ ना कुछ है चाहिए है दो दिलों नू जोड़ना है इतने दो दिल जोड़ने दो विचार नू जोड़ना दो ख्याल नू जोड़ना तो कोई तो चाहिए है बस ये गुरु तीजा है जो दोहां नू इक करदा है दोहां ते मोर लांदा है ते हुण मैं दो मिनट आपके होर लवां ते समाप्ति करा रिश्ते दुनिया दे दो तरह दे खून दे रिश्ते ख्यालां दे रिश्ते विचारां दे रिश्ते मन दा रिश्ता जिहड़े खून दे रिश्ते ने इन्हां दीआं प्रणालियां तिन ने नानके दादके सौरे वे खून दा रिश्ता दादकियां नानकियां ते फिर सौरिया पर नानके दादके ते सौरियां दे रिश्तियां नू जिथों जन्म मिलदा है पति पत्नी तो ये रिश्ता खून दा रिश्ता नहीं है बच्ची किसे घर दी बच्चा किसे घर दा खून ते इक नहीं है किस तरह किया जा सकदा खून ये खून एक नहीं है ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने भी नहीं मनिया सतगुरु की बाणी कहती है ये दिलां दी सांझ है विचारां दी सांझ एक जो दोए मूर्ति भन फिर कहिए सोए महाराज कहंदे ने असी पति पत्नी उसनों कहने हां विचार एक हो गए ने मूर्तियां दो ख्याल एक हो गए ने मूर्तियां दो ने पर इतनी गल स्पष्ट है जिथे विचारां दी सांझ हो जाए प्यार का जन्म उथे ही वरना नहीं जिथे विचारां दी सांझ हो जाए प्यार उथे पैदा होंदा है और जिथे प्यार है उत्ते एतबार भी आंदा है एतबार भी मनुख दा उत्ते नहीं जांदा और जिथे एतबार है कहिंदे ने सदाचार दा वासा भी उत्ते ही है और जिथे सदाचार है करतार दीआं सारीआं बख्शिशां भी उत्ते ही करतार दीआं सारीआं नियामतां भी उत्ते ने आप सारे सियाणे बैठे बच्ची बच्चे भी ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਹੈ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ
ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਦਾਦਕੇ ਨਾ ਨਾਨਕੇ ਨਾ ਸੌ। ਇਹ ਜੋ ਤਿੰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਦਾਦਕੇ ਨਾਨਕੇ ਸੌ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੋਏ ਮੋਗ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਪੀਆਂ, ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਨ ਸਕਿਆ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਕੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਚਲੋ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਕੀਆਂ, ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਧਨ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਜੋਤ ਇੱਕ, ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ, ਜੋਤ ਕੀ ਮਨ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਣ ਤੀਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲੈ, ਕਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹਿ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਮਹਿਕ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ।

सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैभं गुरु प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में

सज्जन कुटुंब सुख बांधव ना बराता पर दादा ते पुत्र पोतरा ये सब दादकियां भी प्रणाली च आ जाते नहीं ननसार नानकियां का रिश्ता मां तो चलता है दादकियां का पिता तो चलता है नहीं ननसार माता पर माता ब्रज माता मामी मामू मासी मौसा बिबद बिखियाता है तीसरा रिश्ता सौरे का पत्नी करके या पत्नी का पति करके चलता है नहीं ससुराल सास ससुर सारो ओ सारी नहीं ब्रिटिशर जाचक ओ ना गाता है असन बसन धन धाम काहू ने ना देखे हो जैसे गुरु सिख साध संगत को नाता है भाई साहब कहने लगे सिखी दे नाते तो दाद के नानके सौरे सारे कुर्बान करवा जो सिख का सिख नाल रिश्ता है जो सिख का गुरु नाल रिश्ता है इस तरह का होर कोई रिश्ता नहीं खैर हुण दे रिश्तियां दियां ये प्रणालियां तीन ने लेकिन विचारवाना ने संबंधा दियां जो चार प्रणालियां बयान कीतियां ने मैं थोड़े सामने इन्हां नूं खोलण दा यतन कर रहा क्योंकि मनुख ऐसा प्राणी है मैं फिर दोहरावा संबंधा तो बिना नहीं जी सकता संबंधी चाहिए दूजा तीजा चौथा पंजवा चाहिए कह दिता जाता कला ते रब भी ना पर कौन दसे रब ते है ही कला उन्हें किसी संबंधा की लोड़ नहीं है और जब कोई जपद्या जपद्या स्वयं परमात्मा का रूप हो जाता है ब्रह्म ज्ञानी किसे संबंध की लोड़ नहीं उन मनुख को संबंधा विच जीवना पैंदा है संबंधी चाहिए विचारवाना ने दार्शनिक लोगों ने धार्मिक ज्ञानियों ने ये जो चार प्रणालियां मनिया ने एक सब तो नीवी एक सब तो शिखर दी दो विचकार दिया सब तो नीवी अपने लोग को कीनों में इस नाल इस वास्ते संबंध जोड़े है वक्त सिर कम आ जाता है लोड़ां दी पूर्ति कर देना है इस करके चंगा लगता है उंज इस नाल कोई मतलब नहीं कोई मतलब नहीं वक्त पैण पे कम आ जाता है कम सार देंदा है लोड़ां दी पूर्ति कर देंदा है इस वास्ते प्यारा लगता है चंगा लगता है उंज इस नाल कोई संबंध नहीं ये संबंध पशु भी जोड़ लेंदे ने पठे पाई जाओ गौ पिछे भजी आउंदी टुकर पाई जाओ कुत्ते पिछे आई जाते ये संबंध पशु भी जोड़ लेंगे अपने लोभ को कीनों में ये संबंध मनुख मनुखा नाल जोड़ सकता है ये संबंध मनुख परमात्मा नाल जोड़ सकता उंज ते परमात्मा तेरे नाल कोई मतलब नहीं सी पर तू कुछ इच्छावां दी पूर्ति कर देना है तो वक्त सिर कम आ जाना है तेरे अगों अरदास ते जोगड़ी कर दे वक्त सिर कम आ जाना है उंज तेरे नाल कोई मतलब अपने लोभ को कीनो में ये पहला संबंध है लोभ दा लैण दा ते वक्त सिर कम आ जाता है लोड़ां दी पूर्ति कर देंदा है किसी मुश्किल दे वक्त कम आ जाता है जरूरत दे समय कम आ जाता है उंज इस नाल कोई मतलब नहीं मैं फिर अर्ज करा ये संबंध मनुख

परम सन्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सतसंगी जनों आप जी ने पट कीरत साहब जी की रचना तो उचारण किया होया गुरु रामदास कृपालू जी की सिफत विच जो सवैया है इस दा पाठ सरवण किया है। अज दे इस सवैये दा संखेप भाव इस प्रकार है कि आदि गुरु धन गुरु नानक साहब जी ने

आए हुए जग्यासुआ उते शब्द सुरत दे अभ्यास दी बरखा कर दिती। गुरु अमरदास उन्हां बारे भट्ट जी कह रहे ने उन्हां दी कथा ही अकथ है। साडी एक जबान साडी एक रचना गुरु अमरदास जी दी कथा नूं पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकदी। किन्ने इन्हां तीन पातशाहियां दी कृपा दा सदका हुण धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान गुरु नानक साहब जी दे भगती दे खजाने दे मालक बने ते इस जगत जलंदे नूं परमात्मा दे नाम दियां दातां मंडण वास्ते गुरु रामदास हुण कृपा पै कर दे। आओ इस अमृत बचन दी विचार धन गुरु रामदास जी दे चरणा विच अरदास करिए कि आप कृपा करके विच वर्तन प्रेम भावना श्रद्धा और अकीदत दी दात बख्श के इस मलीन ते खिंडे हुए मन नूं पूर्ण तौर ते टिका बख्श। आप ही विचार करा लैन साध संगत बख्शो आशीष और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो कृपालता फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आद गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा नानक नाम निरंजन जानियो। धन गुरु नानक साहब कृपालू जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया किन्नी भगत प्रेम लिवलाई उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती कीती। आरंभता है प्रेमा भगती तो धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। धन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उसकी प्रेमा भगती लई सानू प्रेरिया है। जिवें असी बाणी विचों धन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन कहा। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने यह बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका सिर जुलां जे मुंह पिरी मिलन के अपने तन नूं तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हठ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ां बल दिया ने। तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका जे पैरां नाल चलदिया होया थक जावा सिर जुलां मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली बाहर दी भटकना तो बचा सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल।

0: कल हमारी सरकार आ गई 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
1: So the Musiala, baby. Yeah.
2: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। कहा कि इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट मत।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Bad and Sardarni Surinder Kaur Bad. 1550 Radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo
2: 2 तक धनिये दियां 2 गुच्छियां 1.25 नू ताजा अदरक लवो 98 सेंस नू पाउंड बिना बीज वाला हदवाना 78 सेंस नू पाउंड अते पालक लवो 1.29 दी गुच्छी

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
2: जो यह कथा सुने अर गावै दुख पाप देह निकट न आवै बिसन भगत की ए फल होई आद ब्याद छुवै सकै न कोई सम्मत सत्रह सहस पचावन हाड़ बदी प्रथम सुख दावन तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लहो लेहो सुधारा दोहरा नेत्र तुमके चरण तार सद्रव तीर्थ रंग श्री भगवत पूर्ण कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया